0: Discover affordable Dubai with Southall Travel. Enjoy three nights from just £629 per person, flying direct with Emirates. Perfect for families, couples or shopping trips. Hurry, limited availability and travel by December 10th. Call 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk. Southall Travel. Pay less, enjoy more. Southall Travel. Atoll protected.
1: Think outside the lunchbox. Grab the Meal Deal Plus from McDonald's. It's plus because you get a snack wrap or cheeseburger, plus fries, plus a selected drink, plus one of six bonus sides. All that savour satisfaction, plus it's only £5.59. From 11 a.m, not on delivery. Includes a selected savour menu main, medium fries, selected medium drink, and a bonus side. Price and participation may vary.
2: ZTV HD par, Sare Gama Pame. कसौटी पर उतरकर कंटेस्टेंट्स करेंगे म्यूजिकल धमाल
3: व्हाट अ टैलेंट यार कमाल
2: एयर इंडिया सारे गामा पा प्रेजेंटेड बाय साउथ हॉल ट्रैवल आज शाम 7:30 PM जी टीवी HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जिन मीडिया 809 BT 394 एंड Z5 ऐप
4: Pepe's Piri Piri presents the Unstoppable Tour 2027. After a sold-out tour this year, the very talented Shreya Ghoshal is coming back once again for a very special concert to celebrate the O2's 20th birthday on the 4th of June 2027 at the O2 London. Tickets are selling fast via Ticketmaster and Videorama. Grab your tickets now. This show is powered by Dairy Valley, produced by Grace Entertainment and Rallo Events, Radio Partners Sunrise Radio.
5: दोस्तों आप सभी का स्वागत है खेलो और जीतो के मेगा एपिसोड में। बम्पर प्राइज जीतने के लिए अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
6: जी पाजी।
5: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
7: सर जी प्लीज, मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूंगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूंगा।
5: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए।
8: हेलो
7: पापा जी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और सवाल ये है कि गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
8: ओ हाय रब्बा, ओ उल्लू के पट्ठे, तेनू एना भी नहीं पता, सारी दुनिया नु पता है यार, गोल्ड बैंक।
7: सर जी, आंसर गोल्ड बैंक लॉक किया जाए।
5: और ये बिल्कुल सही जवाब, गोल्ड बैंक इज द राइट आंसर। सबको पता है गोल्ड खरीदने और बेचने की सबसे सही जगह है गोल्ड बैंक। हाय,
9: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथॉल 0203 500 1111 goldbank.co.uk।
10: The USA always goes big on flavor. Whether you're cooking up a traditional biryani, an aromatic Chinese fried rice, or a smoky Cajun jambalaya, go big with Tropical Sun USA Easy Cook Rice. Enjoy generous fluffy grains that remain separate and soak up all the flavors, making every dish a delight. Tropical Sun USA Rice. Easy cook for an easy life.
11: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन भर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
12: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम एंड खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
11: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
13: Madhus and Sunrise Radio present the Tilda Asiana Bridal Show 2027 at the iconic Savoy Hotel, The Strand, London, powered by Umbala Suites on Sunday, the 31st of January 2027. Calling all elite wedding suppliers to book your stand. Bridal fashion designers, event planners, decor companies, photographers, hair and makeup artists, jewelers and DJ entertainment companies, bespoke bars and drinks, wedding stationers, florists, wedding gifting services and much more, all under one roof at the magical Savoy. To book your stand and see floor plans, visit asianabridalshow.co.uk or email arjun at madhus.co.uk. The Tilda Asiana Bridal Show, Sunday the 31st of January 2027 at the iconic Savoy Hotel, The Strand in London. Thanks to our sponsors, Chivas, Cobra Beer, Coca-Cola, Sony TV and Umbala Suites.

0: Well, I get your votes in 07925 700 272.
1: Discover affordable Dubai with Southall Travel. Enjoy 3 nights from just £629 per person, flying direct with Emirates. Perfect for families, couples or shopping trips. Hurry, limited availability and travel by December 10th. Call 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk. Southall Travel, pay less, enjoy more. Southall Travel, Atoll protected.
2: Pre-book your jewellery at Kalyan Jewellers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewellers store at Belgrave Road, Leicester and Green Street. Upton Park, London to grab this offer. Conditions apply.
3: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
4: नवरात्रि के रंग में मिला है और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा नमकीन मैंगो पल्प चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
3: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
5: One builder, one designer, one company for the whole thing. Imagine that. No chasing, no blame, no juggling 10 different trades.

0: रोज आर्गूमेंट नी चंगी ते पमरे नो गुड झगड़े चेड़े
1: लेट्स अंडरस्टैंड ईच अदर

0: Bastian. Bow.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: This month, Mera Boiler is offering a pre-booking sale with a £350 discount on all Bosch boilers. Get a fully fitted 25-kilowatt Bosch boiler for just £1,875. Complete with a 7-year guarantee. Call 020-8150-2025 or visit meraboiler.com now. T's and C's apply.
1: Navratri ke auspicious festivities mein aapke aagman bar se saakshat Nav Durga Maa ka aashirwad. Aisi gem and foods ki or se dher sari shubhkamnaye.
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा नमकीन मैंगो पल्प चिकी और बहुत कुछ. विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे.
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया.
3: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खेलो और जीतो के मेगा एपिसोड में. बम्पर प्राइज जीतने के लिए अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन. तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
4: जी पाजी.
3: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
5: सर जी प्लीज, मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूँगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूँगा.
3: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए.
6: हेलो
5: पापा जी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और सवाल ये है कि गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
6: ओ हाय रब्बा, ओ उल्लू के पट्ठे, तेनू एना भी नहीं पता, सारी दुनिया नू पता है यार, गोल्ड बैंक.
5: सर जी, आंसर गोल्ड बैंक लॉक किया जाए.
3: और ये बिल्कुल सही जवाब, गोल्ड बैंक इज द राइट आंसर. सबको पता है गोल्ड खरीदने और बेचने की सबसे सही जगह है गोल्ड बैंक. हाय,
7: visit the Gold Bank, 215 the Broadway, Southall, 0203 500 1111. goldbank.co.uk.
8: Saturday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak, daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
9: Sunrise Radio. Coming up, a bit of Weird and Wonderful.
10: You know we had to do it one more time.
11: ਕਾਲੀ ਕਜਲੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਹੈ

0: My mom started cooking with khanam ghee in the 70s. Dal makhani, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using khanam ghee for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth. Satisfying taste. Now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
1: Mom, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghee.
0: Khanam Ghee, the legacy lives on.
2: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
0: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज। 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
4: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
5: Yes, Bebo.
4: What's the catch?
5: With Malabar Gold and Diamonds, enjoy free gold coins on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, get up to 40% off on diamond value and making charges of selected gold and diamond jewelry.
4: I still can't believe it. No catch.
5: Catches happen in matches, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Green Street, East London. Belgrave Road, Leicester. Soho Road, Birmingham and Broadway, Southall.